मतलब है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि लखा मन कागजात होवन, नानक कागज लख मना, पढ़ पढ़ की चै पाए, मसू तोटना आवे मसू मिन स्याही। लेखन पाउन चलाए, लेखन मैंने कलम, हवा की तेजी नाल कलम चले। इथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी ऐसा ही फरमाते हैं कि कागज दीप सभे करके, दीप मैंने बर्रे आजम जितने एक खंड ब्रह्मांड ने, कागज दीप सभे करके और सात समुद्र न की मस कहे हों। गुरु साहब जी की कविता का जो खुलासा है उभार है, ये हर जगह पढ़ो तो इदा का होगा जिमें पर्वत की कुख चो चश्मा फुटदा है, उछलदा, कुददा, अचकेरियां करदा, उलार खांदा। तो हर कविता महाराज की ऐसी है जिमें जाप साहब के अनेक संत ने, अजय अलह अपह अभू उजू अनास अकाश गणपन इस तरह न। तो सारी कविता महाराज की इस तरह उछाले लैंदी है, जुर दर्शाती है, शिजाज दर्शाती है, उलर उलर तुरदी है। कागज दीप सभे करके अरसात समुद्र की मस कह हो, काट बनास्पति सगली लिखवे उनके लेखन काज बनाए हो, सरस्वती बक्ता करके जो कोट गणेश के हाथ लिखे हो। आप की है कि महाराज कहते ने सारी धरती कागज बन जाए, सारा पानी स्याही बन जाए, जंगलाता दे जंगलात लेखनियां बन जान, कलमां विच बदल जावन, ते तेरे गुण फिर आखे कौन, को सीमत मत वाला, महदूद अकल वाला, लिमिटेड ब्रेन वाला नहीं, विद्या दे अवतार, किस तेजी नाल ते कितना चिर कहिंदे जान तेरी वडियाई नू। तुकां विच महाराज दर्शांदे ने कि सारस्वती बक्ता करके, सारस्वती सरस्वती दा मुखफफ है, सरस्वती तो विद्या दी देवी है, एह तेरे गुण गावे, सारस्वती बक्ता करके कौन ते किन्ना चिर किस तेजी नाल लिखे, जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हो। गणेश जी करोड़ा युग तेरे गुण लिखण वास्ते ला दे, सरस्वती बोले गोया होवे बयान करे ते सामान पहले देख लिया है। गुरु जी कहंदे ने फिर की नतीजा निकल सकेगा, सारस्वती बक्ता करके जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हां, काल कृपान बिना बिनती हे अकाल पुरख अंतर जामी, कृपान सूचक है कि तेरी भी शक्ति लय करन दी भी है। तो एक संसारी, एक भंडारी, एक लय दीवान, लय मीन्स लय लैण की बाण है, आदत है, यानी मृत्यु करन दी भी तेरे विच ही शक्ति है, होर कोई मार नहीं सकता। तो काल कृपान बिना बिनती, बिनती तो मुराद इज्ज़त इनकसारी निम्रता, बिना तेरे अगे सजदा कीते हो सिर झुकायो कोई गल बन नहीं सकेगी, काल कृपान बिना बिनती ना तो तुमको पवन नै किरी जायो, तिल मात्र भी तेरे गुण ने ध्यान कर सकनगे। तो अंत फिर इहो कहना पवेगा कि

गुरु जी दर ते बह के अरदास करनी है। असी कलयुगी जीव हां, हर श्वास बुलनहार हां। हे निरंकार, जेड़ी भी गल करते हां ना, उस नाल कूड़ दी लब लगी होंदी है, इसलिए असी गुनाहगार हां। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, तेरी बख्शिश होवे रहमत होवे ता इन्हां इन्हां पंजां तो छुटकारा मिल सकदा है, पंजां ते जित पाई जा सकदी है। ये पंज कौन हन जो इस गरीब दे शुभ कर्मा नू शुभ कम्मा तो रोकदे हन, शुभ कम्मा नू नष्ट कर देंदे हन? ओ हन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए गुरु अर्जन देव पातशाह जी अरदास करदे हन, हे निरंकार, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखनहारे। ऐसे कठिन संसार विचों कोई किवें तर सकदा है जितने तक तेरी कृपा ना होवे, तेरी रहमत ना होवे। जे तू चाहे तो की नहीं करवा सकता, जे तू चाहे तो बख्शन विच कोई देरी लगेगी, इसलिए साढ़े ते कृपा।

प्राप्ति हो जावे तां फिर ओ गुरु इस लोक विच भी सहायता करदा है, परलोक विच भी सहायता करदा है। जिहड़ा गुरु इस लोक विच सहायता नहीं कर सकदा, परलोक विच क्या करेगा? उहदी तां पहुंच उत्थों तक है, तिथे तू समरथ, जिथे कोई

कितना कु माड़ा हो सकता है, इतना माड़ा है। वो कुत्ते दा मांस जिहड़ा शराब च बने, मरे हुए बंदे दी खोपड़ी विच रखे है। अकीर्तकारी इंसान इतना भैड़ा है, वो कुत्ते दे मांस तो भी भैड़ा है जिहड़ा शराब च बने है। ये सुन के हुण आप

कुछ निंदिया चुगली करने वाले भी खड़े, बादशाह के दरबारी भी खड़े। कबीर साहब जा पहुंचे, बादशाह ने देखे और बादशाह कबीर

क्योंकि निंदा चुगली करने वालिया ने बादशाह दे कन भरे सन कि कबीर सारे माड़ा कहता है, पर कबीर ने कभी किसी माड़ा नहीं किया। सच्चे भगता तू हमेशा लोग सड़ते रहे। सिकंदर लोधी बड़ा गुस्से विच है, एक ते मैनू सलाम नहीं कीती ते दूसरा कबीर मैनू झूठा बादशाह कहता। हुण बादशाह ने कहा, ऐ कबीर राम नाम जप

जे लोड़े सदा सुख भाई, साधु संगत गुरें बताई। निशानी की है, नकली भी बड़े हैं। निशानी की साधु की,

0: संगत रहो, जौ की भूसी खाओ।
1: जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड़।
0: कबीर साधु की संगत रहो, जौ

नानक तू लेना तू है गुर अमर तू बिचारिया गुर डिठा तमन सदार रामदास।

को आस जगत गुरु की पार्श पेट पर्श करो रामदास गुरु हर सत की ओ समरथ गुर सिर हतरे ओ कसमल जाय हर घनन कसमल जा हर घनन।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास ना ये रामदास सरी ना ये रामदास ना ये रामदास सरी दास सरी दास दास ना ये रामदास सरी ना ये रामदास ना ये रामदास सरी हम अब गुण बार

रघुवंश रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं सतगुर सेव अलखगत जाकी।

तो तुम से लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, मैं मेरा माता, तू मेरा

जन को सब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवान चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आला दे किस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल साखी।

मधु जिनई थार, जिस पे हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा देना, जो तू दे सोई सुख सहना, जो तू दे सोई सुख सहना, हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

दिन हो तो साधु तुरे आवण जानू रे चित पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण गाओ सा सुपाई मन तिंदे

दूसरा शब्द शरण गुरु जी भरत नारायण पदा दुबसा गुरु परिणाम वाणी गुरबाणी लागे तिन हस्ते